0: आपको बड़ी तारीफ है, बहुत सारी इच्छा आदान प्रदान है, लेकिन संगीत ऐसे
1: Yeah.